0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street Northeast Calgary।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
4: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
5: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-16।

जिन्ना चिर अमली तौर पर काम नहीं करेगा, अमली तौर पर काम करेगा तो बंदा आकाश भी उड़ारी मार सकता है। सो किवें जपिए, बेशक ये विचार जड़ी है संपूर्ण नहीं हुई क्योंकि छोटा जहा अद्धे घंटे दे विच कई बार इस विषय नूं आपां पूरा नहीं कर सकते, पर इन्ना जरूर है कि नाम का मतलब जड़ा है वो ज्ञान है। नाम का मतलब जड़ा समुचे ब्रह्मांड का ज्ञान है, पर अमली तौर पर ज्ञान के मुताबिक ही, क्योंकि गुरु साहब सवाल यही करते ना किव सच्यारा होइए, सच्चा किवें बनना है, किव कूड़ा टुटे पाले, कूड़ की दवार परम की दवार भुलेखा किवें, दुबधा किवें दूर होएगी। तो कहंदे आ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, पर उस हुक्म दे नाल उस करते की रजा दे विच राजी रहन दे लई भी उद्यम करन दी लोड़ है। इसे करके बाणी कहिंदे उद्यम करेंद्यां जीव तू कमाउंद्यां सुख पुंच, त्याउंद्यां तू प्रभु मिल नानक उतरी चित। तो त्याउणा की है, उसनू चेते रखना है। जे चेते आ तो फिर साडे कोलों कुछ माड़ा नहीं होएगा। आओ अज दी विचार नू इत्थे संकोचदे आ, फतेह दी सांझ करदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आदि गुरु जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

पत्तत पावन भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान मुक्ति दाते रूहानियत दे मुजस्मे कलयुग दे बोहित जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच सजी होई वड भागी साध संगत जी वड भागी हो तंता दे योग हो अहो भाग आप जी दे नितनेम प्रेम भावना सहित सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दर्शन इशनान करके सतगुरां दे महान पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा दीवान अस्थान मंजी साहिब विखे सज बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो संगतां दे गुरु चरणां नाल जोड़न दे वास्ते प्रबंध ने महान उपराले कीते ने जिथे संगतां कलयुग में कीर्तन प्रदाना सरवण कर दियां ने उथे दीवान अस्थान विखे सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत भए सुख सैल सतगुरां दे अमृत बचना दे अनुसार गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा और जो सतगुरु जी अमृत वेले त्रुट के साडे कलयुगी जीवां दे उधार हित जीवन दे असली मकसद नूं समझाउण दे वास्ते जीवन दे हर पहलू नूं गुणवत्त दे अनुसार ढालण दे लई सफल जिंदगी जीउण वास्ते अमृतमई बाणी दे सतगुरु पातशाह जी मुखार बिंद विचों बख्शिश कीते इलाही फुरमान बख्शिश करदे ने जिस दी आप जी रोजाना ही गुरु के प्यारियां दे पासों विद्वाना पासों बड़े प्यार विच अमृतमय बाणी दी कथा सरवण करके अपने स्वासां नूं सफले करदे हो चरण लेखे दे विच लाउंदे हो शरीर दियां इंद्रियां नूं पवित्र करन दे वास्ते साहिबां दी पावन गोद दा निघ माणदे होए हाजरी लवाउंदे हो सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती शहीदां दे सरताज आउण वाले दिनां विच जिन्हां दा महान पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा श्री दरबार साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वड्डे पद्धर ते मना के संगतां नूं गुरु इतिहास गुरबाणी सरवण करवाउणी है पंचम गुरदेव निरंकारी जोत अपने मुखार बिंद विचों जो अमृत बचन बख्शिश कीते ने ओ सतगुरां ने तनासरी राग दे विच उचारण कीते ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच राग ते रागनियां उचारण कीतियां गईयां ने पर सतगुरां ने राग तनासरी शब्द वरते है इस करके सतगुरु जी तनासरी राग दे विच जो महान बख्शिश कर रहे ने आओ उसकी विचार कहन सुन दे लई सुरतियां बिरतियां एकाग्रता दे विच करके जो असी समा गुरु हजूर विच बतीत करना है
ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ

ऐ मेरे मन, जिस मालिक ने यह शरीर बख्शिश किया है, ऐ मनुखा जन्म बख्शिश किया है, मनुष्य क्यों कहा जाता है, मनुख क्यों कहा जाता है इसनू? क्योंकि एदे पास मन है। इसे करके साडे देश दे ऋषियां मुनिया ने इसनू मनुष्य कहा, मनुष्य मन रखण वाला। मन दे चार रूप ने, कदे मन बुद्ध बनता है, कदे चित्त बनता है, कदे अहं बनता है। अंतशकरण दे विच मन नू रोक के रखना है, मन नू टिका के रखना है। इस करके अरदास करनी है गुरु दे अगे, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। किसे मड़ी मसाणी ते अरदास ना कर, किसे जंडी पिपल दे अगे अरदास ना कर, गुर पै अरदास कर। इथे रारे दे सहारी लगी होई है कि जदों अरदास करनी है ना, गुरु दे अगे अरदास कर। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे ने, हे मेरे मन, अपने सोए स्वरूप रूपी घर विच आउणा कर। मालिक ने यह जीवन बख्शिया, मनुखा जन्म, मन है इस दे पास। ये सोच भी सकदा है, चिंतन भी कर सकदा है, शुद्ध अहंकता दे विच भी हो सकदा है। जे मन तो यह काम ही नहीं लैंदा तो फिर तो पशु है, पशु दे पास मन नहीं है। इसलिए सतगुरु पातशाह कहिंदे ने, ऐ मेरे मित्र मन, भटकना नूं त्याग दे, चंचलताई नूं त्याग दे, देशां विदेशां विच भटकना त्याग दे, अपने सोए स्वरूप रूपी घर विच आउणा कर। हुण मन किवें टिकेगा? यह जीवन जिहड़ा बख्शिया है ना सतगुरां ने, गुरबाणी विच जितनी भी अमृत वाली बाणी है, मनुख नूं समझाउण वास्ते है। किसे पशु पंछी नूं समझाउण वास्ते नहीं, पर मनुख नूं समझाउण वास्ते पशुआं पंछियां दी तशबीह दित्ती है। मनुख नूं 21 गुण पशुआं पंछियां तो लैने चाहिए, 21 गुण। जे 21 गुण असीं पशुआं पंछियां तो लै लवांगे ना, ते मन टिक जाएगा, मन टिक जाएगा। बड़े प्यारे बचन कहे ने चाणक्य ऋषि ने, वो कहिंदा है, एक गुण केहर ते एक बक ते लेवै, चार गुण कुरकट ते तीन गर्दव ते लेवै, पांच बाजते लेवै, खट सुवान के कहे, राजनीत की बात ये चाणक कहे। कहिंदे शेर तो भी एक गुण लेना चाहिए, इत्थे व्याख्या का समा नहीं। कहिंदे एक गुण बक ते लेवै, बक कहिंदे बगले नूं। बगला जदों किसे छप्पड़ दे किनारे ते, किसे छंभ दे किनारे, नदी दे किनारे ते बैठदा है ना, खलोंदा है, बिल्कुल अडोल हो जांदा है। कोई उहदी अख नहीं झमकदी, कोई खंभ नहीं हिलदा, कोई लत्तां पैर नहीं हिलदे। कहिंदे ऐन अडोल हो जांदा है। ते साहिब कहिंदे आ, मनुख तूं बगले तो ही लै लै गुण इक। जदों बैठदा है ना गुरु की संगत विच, जदों बैठदा है नितनेम करन वास्ते, जदों बैठदा है सिमरन करन वास्ते, ते बिरतियां नूं अपनियां इंद्रियां नूं संकोच लै, बगले वांगू अपनियां बिरतियां नूं इंद्रियां नूं संकोच लै, केवल ते केवल तेरा ध्यान एक निरंकार दे वल्ले होवे। वो एक टक बैठदा है, जदों उहदा शिकार हुंदा चढ़ा उसे वेले उहनूं पकड़ लैंदा। इसे तरह मनुख ने बैठना है गुरु दे चरणां विच। इह जरूरी नहीं कि असीं काम धंधे छड के बैठना है, जिथे भी बैठना है कागर च धो के बैठना है।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੇ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਵਿਖਿਅਨ ਕੋ ਤਾਹੇ, ਕਿਹਬੇ ਦਰੋ ਕੋ ਤਾਹੇ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ

0: फिर करना की है, क्योंकि जदों बाहर भटकदा है ना मन, विकारस नूं भटकता भड़काउंदे ने, ते सतगुरु पातशाह कहिंदे जदों घर विच आ गया सोए स्वरूप रूपी अंतस्करण रूपी घर विच वस गया, फिर आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुनी विच, आराम दे विच होके, एकाग्रता विच होके, सहज अवस्था दे विच होके, जदों कोई चंचलता ही नहीं, कोई हिलजुल नहीं, उस अवस्था विच होके गुण गाओ। उस मालिक दे गुण गाए ने, प्रभु दे गुण गायन करने ने, उस मालिक परमेश्वर दे गुण गाने ने, किसी व्यक्ति दे गुण नहीं गाने, उस वाहिगुरु दे गुण गाने ने। ते जदों वाहिगुरु दे गुण गावांगे ना, फिर आनंद मंगल खुशियां ही खुशियां, फिर खेड़े ही खेड़े, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, की है इहां खैर सदा मेरे भाई। फिर आनंद मंगल बन जाता है, आत्मक आनंद हो जाता है।
1: तुम कार

आधार आसरा लैके गुरु दे शब्द की टेक लैके जदों मन चार्च फिरे दौड़दा है ना ते मन दे विच सिमरन शुरू कर दिया कर। डॉक्टर वीर सिंह जी भी यही बचन कहिंदे ने ना, मन दौड़दा है ते इसनू रोकण वास्ते गुरु दे शब्द दा होड़ा लै। मन लोचै बुरियाईआं गुर शब्दी ए मन होड़ी है। मन नू गुरु दे शब्द दा होड़ा लाउणा है, रोकणा इहदे मन विच दया पा देना है। इसलिए सतगुरु जी कहिंदे ने गुरु दे बचना दे आधार आसरे दे नाल ए तेरा मन जिहड़ा अस्त्र रहेगा, कदे डोलना मत, कदे मन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी। ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: नंबर 124 4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग पे कॉल करो 403-605-6300 यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकते हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ये 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इना तो किसी भी तरह के नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 या फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

0: करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
1: प्रोग्राम संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले, तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
0: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124, 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347, 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट, कैलगरी, नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
0: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले, तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 4

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 ते संपर्क

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करांदे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.

सरनाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा। धन धन गुरु राम।

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड भाड़ी कूड बैसनहार कूड सोना कूड रूपा कूड पहननहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपे अपार कूड मियाँ कूड बीबी खप होए खार कूड।

पुरुष पंडित हिकमत हुज्जत संजय तरे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ भय कर सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोले जापे महला पहला वदी सो जग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाड़ा मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे।

0: तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर हम हला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: ए कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस दिवस है जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा ता उम्मीद साधन मारिए देह काले काले ना तेवे हो। नाव प्रचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दर गया हारिए पड़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारिए मुझले सोके मारिए सोके मारिए।
0: ਬੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਕਾਲੇ ਖਾਲਨਾ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਚਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ।

साध बलिहार। अमृत परवासार अतुल भंडार पार, पराही ते पराय अपर अपार पार। अपनो पावन कार

0: हाद बलिहार। सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर रेओ सर्ब में आप है नरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हां के बल बल बल बल सद बलिहार। सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो तान, तन मन तन मन तन तेरो प्राण, एक है सूत है जहान, कवन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्ब को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हां के बल बल बल बल सद बलिहार।
1: निरंकार अकार अखल पूरन अविनाशी, हर खवंत अनंतरो निर्मल बेगासी, गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी, जांको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो, तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो।
2: सत सत हर सत, सत सते सत पढ़िया दूसर आन न अवर, पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम ले, मन सब सुख पाए जेहर सिन चाखियो, तेजन तिपत

0: सगळ श्रेष्ठ लागे बेतरो।
1: निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर थायत बाड सुपर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख।

परम पै फूले सुत दारा सेऊ प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक

0: दास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। हो वै सिफत खसम दी नूर अर साहो कुर साहो चटिया, तुद डिठे सच्ची पाते सा माल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोही है सावना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोही है सावना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला चौथा, हार स्यो प्रीत अंतर मन भेदया, हार बिन रहण न जाई। ज्यो मछली बिन नीर बिन सै, त्यो नाम बिन मर जाई। हार स्यो प्रीत अंतर मन भेदया, हार बिन रहण न जाई। ज्यो मछली बिन नीर बिन सै, त्यो नाम बिन मर जाई। मेरे प्रभ कृपा जल देवहु हर नाई,

रहाओ। ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावै सुख सहजी, हरि आपाइ सुपाइ। मन मुख भूखे दह दिस डूलह, बिन नावै दुख पाई।

कृपा करहि ता हर गुण गावहि, हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है, तृष्णा शब्द बुझाई। कृपा करह ता हर गुण गावह, हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है, तृष्णा

0: पवित सत गुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लय ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे पंजा प्यारियां सह साहिब जादियां चालियां मुकटियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जापिया वंड सगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथे आ रहा है तो देख तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमानिया देवान। ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ

0: कहु ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाए, धोती टिक्का तै जप माली धान मले शाखाए, अंतर पूजा पड़क ते बास संजम तुरका पाए, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास छुरी वगाए तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नार, उना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा वापार, कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा प्रभु, मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जग कसाई, नील वस्त्र पैर वे प्रवान।

थोड़ी सब को अख अपना जिस ना ही सोचन कड़ी है किता आप अपना पहले का संडी है जा रहना नहीं है ते जगता कायद कर बहंडी है मंदा किसना आखिया पड़ करे हो बुझी है मूर्ख है।

0: कृपा कर नित जपै हर नाम हर नाम तरावे।
1: श्लोक महला दूजा। एक ने आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कांडिये सदिर समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के होने आखिए जेले खैवरते सोए महला दूजा।
0: सलाम जवाब दवे करे मंदो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए। पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभालिए। जित कीता पाइए आपना, सकाल बुरी क्यों कालिए। मंदा मोल न कीचई, दिल मी नदर निहालिए। जो साहिब नाल नहारिए, देवे हा पासा डालिए। केछ लाहे ऊपर कालिए, ऊपर कालिए, ऊपर कालिए। सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। जित कीता पाइए अपना, सा काल बुरी क्यों कालिए। मंदा मोहना की चेदे लम्मी नदर निहालिए। जो साहिब ना नहारिए, ते वेहो पासा टालिए। पिछला है ऊपर खालिए, पिछला है ऊपर खालिए।

प्रेम सकत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी लाल जिनी नाम ते आया गए मसकत।

रहाओ। जो चात्रिक जाल बिन बिल लावे, बिन जाल प्यास न जाई। गुरमुख जाल पावे सुख सहजे, हरि आपाय सुपाई। मन मुख भूखे दह दिस डोलहे, बिन नावे दुख पाई। जन्म मरे फिर जोनी आवे, दरगह मिले सजाई। कृपा करह ता हर गुण गावह, हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पाए है, त्रिसना सबद बुझाई। कृपा करह ता हर गुण गावह, हर

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East कैलगरी।

मैं लाड लड़ाया। ये शब्द गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया है। पर उसे शब्द का अर्थ है

सेवक को गुर सदा दयाल। धन गुरु अर्जन देव महाराज संगतां विच बराज रहे ने, तां एक गुरसिख ने पांच पैसे दर्शनी भेटा रख के सतगुरां अगे बड़े अदब नाल नमस्कार कीती। सतगुरु पांच पैसे चुक के अपनी तली उपर रख लेंदे, कदी पांच पैसे नू सज्जे हाथ ते रखदे ने, कदी खब्बे हाथ ते रखदे ने। संगतां सोचदियां ने सतगुरु अज कोई अजीब कौतक करन वाले ने। आओ तकिए कावल दी कचहरी विच, जिथे एक गुरु दे सिख भाई कटारू नू दोषी बना के बिठाया होया है। लोग एक दूजे नू पुछदे ने भई कचहरी ते रोज लगदी है, अज इन्ने लोग क्यों कट्ठे होए ने। किसे ने दसिया जिहड़ा अपने शहर विच गुरु दा सिख भाई कटारू रहिंदा है ना, सारा शहर जिसते विश्वास करदा सी कि ये कदी गुनाह नहीं कर सकता, अज उसते इल्जाम लगाए। ये देखण वास्ते लोग

बड़ा चाई चाई सतगुरां दे दरबार विच जांदा है कि सारी गल जा के सतगुरां नूं दसांगा। जदों आ के दरबार दे विच खलोंदा है ते संगतां भाई कटारू जी दे आले दुआले कठियां हो जांदियां ने। बई की गल है, एडी हैरानी नाल मेरे वल क्यों देखदे हो? मैं ते सुरखरू होके आया, मैं तुहानू दसदा हाँ अज मेरी ते लाज रह गई। ते संगत दे विचों एक गुरसिख बोलिया, ओए भलिया रह नहीं गई, गुरु ने आप रखी है। ओ कटारू तू सानू की दसेंगा

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इनाकोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट गैलगरी। गैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मैले तुम ओझल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तुम वैसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निःकोट ठाकुर देसा, दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला सम्राट, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ, सतना।

करियो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद, करणो हुतो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध, मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाडित नाहिन पीत, मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाडित नाहिन पीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालिक, सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी महाराज हजूर दी बख्शिश दा सदका, आपां रोजाना सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज हजूर दे अमृत शलोकां दी विचार कर रहे हां। अज आप जी ने 6वें और 37वें शलोक

जी करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे अज दे इन्हां दो श्लोकां दा प्रकरण एक ही है। इन्हां दे अखरी अर्थ हजूर ने 36वें श्लोक विच बख्शिश कीती, करणो होतो सो ना कियो। करणो होतो दा मतलब जो कर्म इंसान ने इस मनुखा देही विच रह के करने सन ओ नहीं कीते। फिर बिनती, करणो होतो जो करना सी सो ना कियो, ओ कम नहीं कीता। की कीता जी? परयो लोभ कै फंद, जिस वक्त ए कम करने सन जा ओ कर्म करना सी, महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब ने उस वक्त परयो ए फस गया। किथे जी? लोभ कै फंद, लालच दे फंदे विच, लालच दी फाही विच, लालच दी फांसी विच। इस श्लोक दी इस तुक दे अर्थ हो गए, करनो होतो सो ना कियो, जो करना सी ओ नहीं कीता ते की कीता, लालच दे फंदे विच फस गया। महाराज कहिंदे ने परयो लोभ कै फंद, हुण की होया? समा निकल गया, शरीर दी ताकत खीण हो गई, अगे वाला जोश नहीं रहा। हजूर कहिंदे ने कौन ओना दिना नू चेते कर रहे जेड़े लंघ चुके, ते हजूर ने फरमाया नानक समयो रम गयो। समय ओ समा ओ वक्त ओ टाइम रम गए, ओ चला गया निकल गया। जिस वक्त तू लोभ दी फांसी च फसिया सी ओ वक्त हुण नहीं आउणा। करनो हुतो सु ना कियो परे ओ लोभ कै फंद, नानक समयो रम गए ओ समा लंघ गया है। ते महाराज कहने अब क्यों रोवत अंध, अब क्यों रोबत अंध अन्ने बंदिया, हुण तू कासली रोना पिया है, हुण तू क्यों विलकना पिया है, हुण तू क्यों पछताना पे, क्योंकि तेरी जिंदगी दा ओ कीमती वक्त निकल गया, जिस वक्त तू कुछ करना सी ओ कीता ही नहीं। इस तो अगे महाराज क्यों नहीं कीता? ते गुरु तेग बहादुर साहब 37वें श्लोक विच कहिंदे मन माया मैं रम रहो। इंसान दा मन माया दे विच पूर्ण तौर ते रमिया होया खचत है, निकसित नाहिन मीत। इहदा अर्थ हो गया हे मित्र, जेड़ा मन माया विच प्रविरत हो चुका है ओ हुण वापस निकलदा नहीं पिया, उस मन नूं माया तो वख नहीं कीता जा सकदा हुण। महाराज जी क्यों? हजूर कहिंदे उसदा कारण मन माया मैं रम रहे हो, मन माया विच रम्या है प्रवृत्त है, निकसत नाहिन मीत। निकस दा अर्थ हुंदा निकलना, नाहिन दा अर्थ नकी, मीत दा अर्थ मित्र। ऐ मित्र हुण ओ रम्या होया मन माया चो नहीं निकल रहा, ते किवें? नानक मूर्त चित्र ज्यों, दो शब्द ने। गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे ऐ मेरे मित्र जिवें एक मूर्ति, दो शब्द मूर्त चित्र। इहदे अर्थ यूं करिए, मूरत दा अर्थ मूर्ति ते चित्र दा अर्थ है लीकी हुई, दीवार दे उत्ते बनाई हुई, टंगी हुई नहीं। इत्थे सतगुरु ने चित्र गया जिहड़ी चित्री हुई है, जिहड़ी पेंट कीती हुई है, जिहड़ी मूरत नूं दीवार दे उत्ते ही रंग भर के बनाया गया। हुण ओह मूरत दीवार दे विच जे टंगी हुंदी ते दीवार तों वक्ख कर लैंदे, पर महाराज कहिंदे ओह तां दीवार दे उत्ते चित्री होई है, ज्वार दे उत्ते लिखी होई है, ओहनूं वाह किवें कर लेंगा, ओहदे च रची होई। महाराज कहिंदे नानक मूरत चित्र ज्यों, जिवें तस्वीर जां मूर्ति किसे दीवार दे उत्ते ओहनूं बनाया जाए, चित्रिया जाए, पेंट कीता जाए। प्यारे ओह मूरत दीवार दे नाल बिल्कुल जुड़ी, वक्री नहीं, छाड़त नाहिन भीत नहीं छड़ दियो। भीत दा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी।

गुण ते प्रभ भिन्न पर हजूर ने कहा तिसे बुझाए नानका। जिद उत्ते रब बहुत खुश हो गए ओनू अपने बारे समझ दे दिंदे पर अकाल पुरख रब का कोई रूप रंग रेख नहीं। रूप न रेख न रंग किश त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न। जिद उत्ते रब बहुत प्रसन्न हो गए ओनू अकाल पुरख रब अपने बारे सुधी दिंदा। फिर वह अकाल पुरख रब का नाम जपदा ओदा शुकराना करदा ओदे नाल जुड़दा। नहीं तो संसार सृष्टि के अंदर करोड़ां लोग ऐसे ने जिहड़े रब दे शुकर गुजार ही नहीं हुंदे जिन्हां नूं रब बारे कोई ध्यान ही नहीं है। वह संसार सृष्टि के अंदर बार बार जन्म लै रहे हैं बार बार मर रहे हैं। सतगुरु बचन कह भाई उन्होंने बंदियां दी सुरत उन्होंने दी पहुंच उन्होंने दी लोड़ सिर्फ शरीर तक जा मन तक। वो मन दे रस करके जींदे हन जा तन दे शरीर दे रसां करके लोड़ां करके जींदे हन। इस तरह संसार विच मन दे रस मुकदे नहीं शरीर दीआं लोड़ां खत्म नहीं हुंदीआं। उम्र मुक जांदी है फिर मर जांदे ने फिर धरती उत्ते जन्म लैणा पैंदा है। ये कई करोड़ां जन्मां तो इस तरह चल गया। जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देश लम्मे। कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज वीर परंगा। सतगुरु सुखमनी साहब अंदर कह करोड़ां जन्म बंदे दे इसे तरह लंघे क्योंकि मन दे रस पूरे नहीं होए शरीर दीआं लोड़ां खत्म ही नहीं हुईआं। जिमें जिमें उम्र बढ़ती जाती है तिवें तिवें तृष्णा बढ़ती है लोड़ां बढ़दियां ने इच्छावां बढ़दियां ने अखीर इच्छावां मन विच रह जांदियां ने। उम्र मुक जाती है बंदे नूं फिर जन्म लेना पैंदा। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने बचन कहे भाई रब किन्हां उत्ते प्रसन्न हुंदा है जिन्हां नूं रब अपने बारे सोझी दिंदा है। सतगुरु के उन्हों वेख्या नहीं जा सकता क्योंकि उसका चक्कर चिहन कोई है ही नहीं। तुसी रोज नितनेम विच पढ़दे हो चक्कर चिहन नर वर्ण जातर पात निजे रूप रंग अर रेख भेख को पहन सकद के अचल मूर्तन पौ प्रकाश अमितोज कहिजै कोटिंदर इंद्राण शाह शाहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम मरण तस्मत। कहते भाई इथों तक दुनिया में जिन्ने लोग रब का नाम ले रहे ने वह भी कर्म नाम ले रहे। अकाल पुरख रब तक पहुंच नहीं है जे कोई जप रहा वह भी अपनी लोड़ां करके पूजा कर उदे तक जुड़न वास्ते वह प्रसन्न किन्हां ते हुंदा है जिन्हां दी संसार दी इच्छाएं मुक जांदियां जिन्हां दी लोड़ां मुक जांदियां जिन्हां दी इच्छा सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम रह जांदा है जिन्हां दी इच्छा वे सिर्फ रब का प्रेम रह जांदा है। रब फिर उन्हां ते प्रसन्न हुंदा है उन्हां नूं अपने बारे सोझी दिंदा है। बुझाए का अर्थ है सोझी देना। फिर सतगुरु बहुत सरल किया बादशाह कहने भाई रब तक पहुंचने वास्ते हुण तैनूं गुरु कोल जाना पड़े क्योंकि शरीर तो बगैर शब्द तो बगैर तू रब नूं बुझ ही नहीं सकदा। अकाल पुरख रब जिसका कोई रूप रंग चक्कर जिहे नहीं उहदे नाल जुड़न वास्ते तैनूं गुरु कोल जाना पैणा। गुरु फिर शब्द दिंदा है शब्द के आसरे नाल जदों संसार दी इच्छाएं मुक जांदियां ने सिर्फ शब्द का प्रेम रह जाता है उदों फिर सार संगत एक रस हुंदा है जिहड़ा मन का नहीं तन का नहीं सिर्फ आत्मा का रस। जिहनूं महाराज बाणी अंदर कहिंदे आत्म रस जे जानई भाई जिन्हां ने आत्म रस जाणिया वह आत्म रस तन ते मन दे रस तो बाद शुरू हुंदा है। अपनी तो सारी उम्र छड्डो कई जन्म मन ते तन दे रस विच ही लंघ जांदे। इस

महाराज असी हिल्प बुद्धि बारे कदे भी भूल कर सकते, कोई बंदा परफेक्ट नहीं, सारी दुनिया इम्परफेक्ट, पर किसी किसी नु समझ आउंदा जिनू गुरु बजा दे। जदों भाई फग्गू ने अखां भर के हाथ जोड़ के विराग विच कहा महाराज कृपा करो।

महाराज अल्प बुद्धि हा, भुल गए होवांगा, याद करा दिओ। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने अखां विचों हंजू करदे वेखे, बुजुर्ग शरीर है चिट्टा शवन दड़ है, जदों अखां चो हंजू संगत विच खलो के किरे, पातशाह अपने सिंघासन तो उठ खड़े, प्यार नाल गलवकड़ी विच लै लिया, कहन लगे फग्गू तू पास हो गया, साध साध शाबाश तू पास हो, फग्गू तू पास हो गया। सतगुर सज्जे पातशाह भाई फग्गू रो के कहिंदा, महाराज कोई भुल हो गई होगी, महाराज दस दो, याद करा दो। पातशाह ने बड़ा प्यार दे के बिठाया, ते फिर कहा, हां भाई फग्गू एक भेटा तेरे वाल रहिंदी है, वो पता की है? महाराज केड़ी भेटा? कहिंदे याद कर, किन्ने साल पहला किसी सिख दे घर तू दसवंध लैण गया सी, उहदे घर वाली उस दिन बहुत गुस्से विच सी, वह सिख घर विच नहीं सी, ते घर वाली किसी कल कलेष माया विच गुस्से विच सी, जदों तू जाके दसवंध भेटा मंगी, उहने गुस्से विच घर दा कूड़ा चुक के तेरी झोली पाता सी। कहिंदे महाराज वह घटना थोड़ी मैं भुल सकदा, तां मैनूं याद है। पर सतगुरु ने कहा, फग्गू तू गुस्सा नहीं कीता, तू वह कूड़ा भी झोली विच पवा के लै आ, ते लिया के तू अपने बेड़े विचों कूड़ा रख दिता, ते भाई फग्गू उस कूड़े दे अंदर एक बेर दी गटक सी, वह बेर दा बीज तेरे बेड़े विच उग गया, आ जिहड़ा बेरी दा दरख्त तेरे बेड़े विच संगत बैठी है। कहिंदे भाई फग्गू ये गुरु दी भेटा दा दरख्त है। बाद में जदों उस सिख नूं पता लगा, मेरे घर वाली ने कूड़ा चुक के पा, कहिंदे उस सिख ने अरदासां करके गुरु तो माफी मंगी, महाराज मेरे घर वाली दी भुल ना चितारियो, महाराज गलती हो गई गुस्से विच। कहिंदे भाई उस सिख दी अरदास करके उहदे कूड़े विच आया होया उह बेर दा खादा बीज जिहड़ा, कहिंदे भाई उह गिटक भी परवान हो गई, उह बेर दा बीज भी परवान हो गया, तेरे बेड़े विच बीज तो बेरी का दरखत बन। कहने किन्ने सालों तो बेर खा रहे हैं, भाई फग्गू चरनी टह पाया, महाराज तोड़ी तुसी जानो। सतगुरु कहने भेटा भाई सारी संगत नो बेर छकाओ, और सतगुरु कह भाई फग्गू तू प्रवान होया, सात संगत उस भाई फग्गू नू ब्रह्म गिजन की अवस्था पातशाह ने सब तो वड्डी पत्ती दी, ओह जे गुरसिखां तो बलिहार जाके। फिर गुरु ने कहा, भाई ये ओ गुरसिख है भाई फग्गू। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज बोले, कहने साध संगत ये ओ भाई फग्गू है, ओ गुरु दा सिख है जिहदी चरण धूड़ लैण नाल भी पापियां दे पाप दूर। साध संगत ओ डिग्री है जिथे सिखां तो उपर चुकता हुण लैंदा, देखो है तां शरीर अपने वर्गा ही हुंदा है, जदों कोई IPS डिग्री कर जांदा है तुहानूं पता है वह पूरे जिले दे अफसरां दे उपर बह जांदा है, ते तुहाडे वर्गा है। इदां ही भाई जदों कोई सिखां विचों गुरु की डिग्री पास कर जाए, फिर गुरु गुरसिखां तों उपर कर दिंदा है, सिखां नूं फिर गुरु कहिंदा भाई इस गुरसिख की चरण धूड़ नाल भी पाप धोते जाणगे, ये हुण आम सिख नहीं रहा, ये पता कौन है? गुरसिखी पाणा मन्निआ गुरपूरा पार लंघाए। ये की बन गया? गुरसिखा किहर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए। एक बार गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने गुरसिखा नु याद करके आप पंक्ति पढ़ी, एक बार सारे प्यार नाल पढ़ो।

0: नानकी इन्हें बहुत वड्डी वड्याई लैनी है। ये छेवें पातशाह ने वचन कहता इहदे घर विच महावली पैदा होंदे वो धन गुरु गोबिंद सिंह ताइयों साध संगत श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की विआह शादी आनंद कारज 1632 विच होए। इतिहास पढ़ो 10 साल 15 साल 20 साल औलाद नहीं हुई गुरु तेग बहादुर महाराज 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल 30 साल लंघे औलाद नहीं हुई गुरु तेग बहादुर महाराज दे। एक वार भी माता नानकी दादी है ना मां है गुरु तेग बहादुर साहब की एक बार भी अपनी नौ पुत्र जबान तो यह नहीं कहा क्योंकि माता नानकी विश्वास से छेवें पातशाह के बचन हुए ने इहदे घर महाबली योदा होना है। बार बार एक गल मां नानकी कहते रहे गुजरी पुत दिल हौला ना करी बाणी पढ़ निरंकार चेते कर तेरी कुख तो महाबली योदा पैदा। सात संगत 30 साल लंघ गए ये जिंदगी का बहुत अहम वक्त है। इतने तो 5-7 साल किसी के औलाद न हो गए झगड़े पै जाते लोग इधर उधर खिसक जाते 30 साल औलाद नहीं हुई। इतिहास पढ़ो 32 साल कोई औलाद नहीं हुई 33 साल बाद ननकार की नजर वरती ब्याह तो पूरे 34 साल 1632 तो लैके 1666 ईस्वी पूरे 34 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हो। इसलिए सात संगत गुरु ते विश्वास रखना बाणी पढ़नी नाम जपना इस संसार दी लोड़ां मन दी तन दी ये भी पूरी होंदियां रहिंदियां पर सब तो वड्डी जरूरत आत्म रस है वो गुरु कोलों मंगना जिहदे करके अपना जन्म मरण खत्म होना है। सारी संगत दा धन्नवाद।
1: गैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: हन। और जानकारी ले 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम

0: दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग ने जेड़े मन दे पिछे चलते ने, भूखे तो भाव है आतृप्त, उन्हां नूं कदे रज नहीं आया, ना पदार्थां वल्लों रज है उन्हां दे, ना इंद्रियां नूं कोई रज है, वो सदा भड़कते रहिंदे ने। दसा नौवां दी किरत विच उन्हां नूं रज नहीं, लोकां दा हक मारनगे, मुरदार खाणगे। तो रज आया है जिन्हां नूं नाम जल प्राप्त होया, नाम दी वरखा होई, तृष्णा दी अग उन्हां दी बुझी है। बिना प्रभु दे नाम तों मनमुख दुख पाउंदे ने, डुलाए मान रहिंदे ने, इन्ना डोलना पैंदा है भी 84 लाख जूना च ही झूलन लग पैंदे ने। टका नहीं मिलदा, लिबरेशन नहीं मिलदी, नजात नहीं मिलदी, शांति नहीं मिलदी, तृप्त नहीं हुंदे। गुरु दे नाम दा जल ही तृप्ति बख्शदा है, रज बख्शदा है।
1: जन्म मरै फिर जोनी आवै, दरगह मिलै सजाई।
0: मनमुख दी सजा तय है, जन्म मरै जमदा है मरदा है, फिर जोनी आवै। ये गेड़ मुकिया नहीं, खूह दी टिंड वांग फिर घूमदा है। हुण इत्थे लफ्ज जोनी है, ये संस्कृत दा लफ्ज है, जन्म लई आया उत्पत्ति लई। हुण गुरमुखी च लिखिया, कई साडे प्रचारक पंजाबी च इहदा अर्थ करदे ने धक्के नाल भी नहीं जी 84 लाख जूना की गल नहीं, इत्थे जूना बदलन का भाव है, कदे बिरती मनमुखां वाली हो गई, कदे गुरमुखां वाली हो गई। तो 84 लाख जूना तो वो मुनकर ने लोग। मैं बेनती करा भी पहली गल ते साडी पंजाबी दा ये लफ्ज नहीं, ते जेड़ा साडी भाषा का लफ्ज नहीं, उत्थे पहला अर्थ साडी भाषा का कदे भी लग नहीं सकता। लफ्ज संस्कृत का है, वरत्या पंजाबी गुरमुखी च है, पहला अर्थ संस्कृत का ही लगना है, ते उहदा मतलब है जूना चौना। हुण पंजाबी च तुसीं जो मर्जी अंतरी वर्थ करी जाओ, तो महाराजा दे मनमुख 84 लाख जूना विच पाउंदा है। हरेक जून भोगण तों बाद फिर कचहरी लगती है, जिहनूं दरगह लफ्ज वरत्या है। हुण इत्थे लफ्ज फारसी दा है, इस्लाम जगत इस लफ्ज नूं करतार दी न्याय सभा लई वरतदा, दरगाह लई। हुण इहनूं पंजाबी गुरमुखी च जे तुसीं इदां वरतना जीए, ते सत संगत नूं आखिया, गुरद्वारे नूं आखिया, इह अर्थ बादां लगणे ने। पहला दरगाह लफ्ज सचखंड लई आउणा है, पंजाबी विच वरत्या है, लफ्ज पंजाबी दा नहीं है। तो धक्के नाल दूसरियां लैंग्वेजेस दे लफ्ज़ां नूं पंजाबी वल ना खिच्चण पिया करो, अपनी मनमर्जी दे अर्थ करके गुरु आशे तो लोकां नूं भड़काउणा। अणदिठी दुनिया दी होंद तो मुनकर होणा दी, जे दिखदा नहीं सचखंड, जे दिखदे नहीं भूत प्रेत, जे दिखदे नहीं शहीद सिंह, तो अहीं मानदे ही नहीं। ते तुहाडे अंदर जिहड़ी रूह है, जिद्दण चोला छड्डेगी उह किहड़ी दिखदी है? तुहानूं वी ते उहने चलाया ही है ना। इदा गोचर हस्ती परमेश्वर की दुनिया चलाउंदी है। मंदे कर्मां वाले भड़कदे ने, भूत प्रेत बनदे ने, नेक नामी शहादतां मानण वाले शहीद रूहां खवाउंदे ने, कुछ मुक्त हो जांदे ने, निजात मिलदी है। तो जदों इत्थे शरीर छुट्टिया, रूहां नूं दरगाह दे विच कटहरे अंदर खलोना पिया, गुरमुखां नूं निजात मिल गई, मनमुखां नूं उत्थे सजा सुनाई गई। हुण सजाए लफ्ज जां सजा लफ्ज, ये भी फारसी दा है, ते इहदा सिद्धा जिहा मतलब है दंड देना, ताड़ना करनी, डांग फेरनी। तो मनमुखां नूं दरगाह विच छित्र रीझना फिरदा है, लख कोई आखी जावे इह जग मिठा, अगला किन्ने डिठा विखा दिंदा है रब, अगला जग भी थोड़ा उड़ीको, कर्मां दी सजा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law ton Tara Cassidy ji de sahyog nal pahunchaya ja reha hai. Ina ton kise vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोज़ेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैल

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केट

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्राम संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वैबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: नेता परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे अवर ना कोई,

तू सबनी ते आया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया। संजोगी मेल जिसनो तू जाना, एह सोई जन जाना। हर गुण सद ही आख बखाना, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हौ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जेन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप संजम तर्म ना कमाया।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोह रक्षा निज कर दै करिया सब बैरन कवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल

जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। सिवकन को सिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहो बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी ओत पोज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवात उतपाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कौ एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़

हो सर्व ठौर मोह हो सहाई दोष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार प्रिया शब्द गावने आईया, शब्दो तगावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया

गुरु बोला जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा निभाही तना दी कमाई दा ते

0: वाहेगुरु की फतेह।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।